नमस्कार, मेरा नाम मस्तदास सिंह है। श्री नगर पालिका और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट उद्योग पर कई किस्म का औसरी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट उद्योग द्वारा

0: ஆனந்த ஆனந்தத்தை சொல்ற காட்டி பிரகாஷ் சொல்றேன் தனித்தி சரிசமி
1: इंटरनेशनल नेपाल को हिल वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप के सहयोगी बदिया जिला में संचालन हुए हर विपत्त उत्थान शिलता तथा सबलीकरण परियोजना

0: छात्र समुदाय का एक दल की आलोचना सामुदायिक विद्यालय तर्फ पड़िया तालुका पालिका को विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालय की मोनिका थापा मधुबनगर पालिका स्थित क्लास माध्यमिक विद्यालय का स्मरण गौपाल बारपुर नगर पालिका सूर्या को भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय की मणिमा अधिकारी चार्जी पेलिया संस्थागत विद्यालय तर्फ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय कोरिया की स्तुति भट्टाई कर्णाली आधारभूत विद्यालय ठाकुर बाबा का चिरंजीवी करायत अन्य को इंग्लिश मीडियम स्कूल मधुबन की निकिता खड़का पर्यटन को बर्दिया एकेडमी का रोजर केसी तथा कृष्णसार विद्या निकेतन का सुगम सुवेदी सुप्रिया सुवेदी टीका विद्यालय चार्जशीट हासिल कर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई का प्रमुख सूर्य बहादुर खत्री का अनुसार जिला में इस परीक्षा में 5260 विद्यार्थी सहभागी जिसमदे 63.3% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका बर्दिया जिला को बरियातल गांव पालिका छह महीना पोखर में अवस्थित कृष्णसार विद्या निकेतन ने इस वर्ष को एसी परीक्षा में उत्कृष्ट नतीजा हासिल करते जिलाक प्रथम विद्यालय बन सफल विद्यालय को सफलता संगे विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक खुशी भैया सहकर्मी अनुष्ठान को एक रिपोर्ट
1: बैठक ग्राम पालिका छह महीना पोखर में रहने कृष्णसार विद्या निकेतन बोलिंग स्कूल ये क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालय

उत्कृष्ट नतिजा हासिल करने विद्यार्थी सम्मान चलाए विद्यालय से स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम के आयोजन करके विद्यार्थी रैली और झांकी सहित

बाबाको क्रिकेट उत्तिकै उत्साहित बन जाँदै बास्केट नगरपालिका चार पहाड़ी कुटले एक अभिभावक निर्मल विद्यार्थी

रेडियो सामुदायिक रेडियो सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यले वर्गीयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारा प्रतिबद्धता घटी व्यावहारिक स्वास्थ्य सेवा में सदस्यों रूप में द्वितीय यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता का कौशल्य अस्पताल खास करी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करती अस्पताल ऐसी सेवा चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याप सेवा उपलब्ध भा प्यारालाई शिशुको मुगान बिना नशा डाकुलक हाट द्वारा निचलना बिरामी मुखनका फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी विधिपछि उपचार कैदेखा
0: नशा तपिने बिरामी हुन्छन् एक दिन अपरेसनल फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी से सफल उपचार गर्छे
1: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था कैदेखा असहाय नागरिक एपल महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन् सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैदेखा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसकरी शाखा 5 बाँसकरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण बजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 और 084400210 बाँसकरी बर्दिया संक्षेप

0: गया तो तैयार किया छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। मैंने तैयार कर जाना नहीं मैंने कोई मेहमान बनू भारत कर लू उन महिला पानी को कर रही है भारी बन सभी किसान बना के ऊपर से समीक्षा के तक उन्हें जरूरत नहीं होगी
1: आगे महाकुण महिला बन हो तब झूठों की हिंसा के एक चीज की आगे सारा संपत्ति सखा पर आगे लगभग सुंदर था वर्दी आरोपी कल जीवन ठाकुर

सब आज संसार की तरह खुद रहेगी बस बारे में रहेगी। तो हमारा घर पर नजर है

0: அதெல்லாம் சத்தியமா இருக்கும்.
1: বৈজ্ঞানিক পাশার কারণ অথবা করে বসলাম বয়স্ক।

0: घर दीदी क्योंकि कल बच्चों शुरू बात करें और ये तो घर से हम सहारा जाएंगे मेरे छोड़ बच्चे को इस वजह से किसी को नहीं मिलता है मुझे दीदी
1: शिक्षा

जब तक कर्मी संतुलित होने खाना जी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का धार हो रेडियो पूर्वा कार्यक्रम का सहकार्य में स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित मुद्दा की संदेश

विशिष्टता समूह बी ग्रुप के साझेदारी में पटिया जिला में संचालन हुई राहुल दीपक

0: सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हामी प्रतिबद्धता घटी, नियमित स्वास्थ्य सेवामा सर्वस्वला रूपमा टिटिएले यहाँ हङकङको स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पहल भएकाले कौशल्य अस्पताल बाँसगरीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गरी
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घण्टा डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराए
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिन्छ
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्युरो सर्जरी हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गराए
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो

अर्थहीन संतुलितता नखाई व्यायाम शब्द करी धूमपान रोकिरहेकी तर बडा नियन्त्रण करी आजुक निर्णय कार्य जीवन अत्रापछि स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यले विद्यार्थी जनहितमा जारी सन्देश।

अतिरिक्त खाना नियमित रूपमा खाई। जंक फूड कम गरी सन्तुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका भार हो। रेडियो पूर्वाधारका सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियासी जनयुक्त जारी सन्देश।

बसेपछि स्वस्थ जीवन अपनाई निशाना रोग छत्त भरत ध्यान ध्रव्य जीवन खत्म हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम श्रद्ध करी धूमपान मदिना बसे टुला रही नियन्त्रण करी आज निर्णय काली जीवन अपराध निशाना रोग बसे बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: ने शुरू करी और नौ बिरादरी साग सब्जी फल फूल समेत सब पोषण पूरक खाना ने बच्चा हनर तंदुरुस्त बनाए पूरक खाना संसद दुई वर्ष समय संस्थान जारी करी
1: सहकार स्वास्थ्य कार्यालय पर जनहित में जारी संदेश।

0: संपूर्ण रूप में सरकार नीति को विकास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परिवेश आर्थिक विवास का मेलदंड नीति प्रसंग में सफल करने पर्ने इसमें संपूर्ण रूप जुनसुक पक्ष को भाई माननीय को आवाज निश्चय करें छ घंटा भी यो संसदीय परंपरा मर्यादा र संसद को अपमान को रूप में मैं लिखे
1: बैठकमा नेकपा एमाले सांसद पद्मा आर्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको सोच अनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नीति के हो कि कार्यक्रम के हो भन्ने नसुटेको दावी गर्नुभयो। आफूलाई नवीन सोचको अवतार भन्ने सरकारले ल्याएको

0: Satuli Buddha, Pariatarinda, Sakaratoxos, Yavalchinta, Rotanabata Mukta Rada, Mutulubato, Otsasakinsa.
1: Kais Bosa Pripati, Nivit Swastadasaro.
0: Chilo Bagata, Matsamasu, Konkao. Kadama Sakta, the Forsal Kao.
1: Madipan, Yatumilpan Stevan Nagaro.
0: Swastadamo, Sukamaya Jivadipan.
1: Nepal, Prakara, Pikasu.
0: वनस्पति और वन्य जंतु संरक्षण ने कहा मानव जाति जीवन संपद में बसे या कर संरक्षण में हमारा सब ये चीटी
2: पश्चिम समुद्र संपत्ति आजादी का कारण भी बढ़ सकता मैं उससे बना आजादी नियंत्रण करना हमारे सपन का दायित्व कर्तव्य हो
0: हमारा
2: सब कुछ अपन बनना चाहिए करना सुखा तुम्हें अन्य से आकर पकड़ मदद संभाल सफाई करी
0: बिरी चुनौत माकर की घर आदि बुताई बनुमन ने खा की
2: बनुमन के बाल बनाना काम नहीं करी
0: बनुमन पीने खाए गए से कुछ कर्म रहा आदि मदद से बुता के चलना छोड़ी
2: सुखा मौसम बनाना आदि लगना वस्तु सवाई लेकर लेकर नहीं लगी
0: बनुमन आदि लगना वस्तु से लगभग बन कार्यालय सामुदायिक बल को प्रबली बना खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई बनाने के बेटा क्षेत्र अनुसार बनाना आगे बचेगा आपका की मार देना कौन भी काम करना बने आपका की मशीन नुकसान में रखी को शुल्क का 60,000 रूपए सम जरिमाना व 3 वर्ष पैदा 300,000 की शिक्षा उधर वैसे बनाने आगे बचेगा आज आगे पीछे का की नकलाब नहीं करे वो अपराध और तरीकों का सरकारी भागीदार में बने डिविजन बल कार्यालय बढ़ गया 0 2 8 4 20 1 6 5

संतरे खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिरा मसिनो टुल रही, तनाव बना नियंत्रण करी, आज निर्णय काली जीवन आधार निशाना रोग मसे बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

ऐसा क्या बताना चाहिए अगर कोई सभा में हो जाए विपक्ष हमारे कोशिश करे लेकिन ये छह साल भविष्य पछाड़ी हमें कुरा उठाई सके पछाड़ी सरकार को तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले लिखित रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिएर पठाउनु भएको माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसको जवाफ दिँदाखेरि हामीलाई के समस्या पर्यो।